बने को चेंचर बाको मिस्ता दूस लोको अचित पातन तुम्हें आ रहा तुम सभी को कलको बाटर पारी का चेचा इंग्यांस के मर का कोने का मु वुलु दिसी को दो काट दत्तम तुमु निकोरा केंपेलम तेल समंगो तुतात ने आने को बाके लोको चुहो कम तीनो बने कर कोना उची बने लर्नांतु बने कुंगला क्वाटिंगामु नावे कोता वे को मामम Katlavik Titaqua Locoda, Seu Chuhokam Tinu, Day Sam, William Quan, Ahi, Katlavik Toko, Kulavakal Ranto Kulavik Titaquama, Suke, Locoma, Chukwan, Ambilu, Idila, Ahi, Tibetan go to Eto, Juliana Tosa, Ibella, Munuan, Gungudila, Alimbia, Quick and Pelam, even a Canadian Dila. But this is your Eshni, 47 minutes.